0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका गोल्डन आवर में। जी हां दोस्तों, देखिए अभी बहुत ही जल्द मदर्स डे आने वाला है और इतने सारे बच्चे मतलब उस खौफ में होते हैं कि गिफ्ट तो सबको करना है अपनी माओ को, लेकिन पता है कि ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा डांट भी पड़ सकती है, क्योंकि माओ को गिफ्ट करना शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि कितने का भी गिफ्ट खरीदो हम, चाहे जितने भी मतलब कम से कम पैसों का भी गिफ्ट खरीदो, फिर भी ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी माँ को कभी उस गिफ्ट की रियल वैल्यू या रियल कॉस्ट नहीं बताते। तो ऐसे में क्या कोई एक हैक है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम अपनी मॉम को दे भी सकते हैं, वो एक वैल्यूएबल गिफ्ट भी हो सकता है और शायद हमें इतनी डांट भी ना पड़े। तो चलिए पूछते हैं हमारे गोल्ड एक्सपर्ट से, यानी बॉबी बंसल जी से फ्रॉम राज ज्वेल्स। नमस्ते बॉबी जी।
1: नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर यू सिद्धि जी। और पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप चाहे कितनी बड़ी हो जाएं, किसी भी ओहदे पे पहुंच जाएं, माँ के लिए कुछ भी लाएंगी तो डांट तो पड़ेगी, लेकिन डांट हमेशा प्यार की पड़ेगी कि क्यों लेके आई। लेकिन जब वो देखती है ना कि वो सोने की चूड़ियां, सोने का झुमका, सोने की चेन, तो यही कहती है कि चल चीज सुलाई तो अच्छी लाई जो फ्यूचर में बच्चों के भी काम आएगी। सो मुझे लगता है मदर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए राज ज्वेल्स के साथ राइट क्वालिटी ऑफ गोल्ड, राइट प्राइसिंग ऑफ गोल्ड के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करना ना भूले, जो स्पेशली गोल्ड के प्राइस $4,700 पर ट्राई ऑन्स ट्रेड कर रहे हो, आप गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए मदर्स डे की सेलिब्रेशंस के लिए मदर्स डे की ऑफर्स rajjewels.com पर जाके विजिट करके चेकआउट करें और 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड में इन्वेस्ट करें और 12 इंस्टॉलमेंट में बिना किसी हिडन फी के पैसे दें। कैसे? आइए राज ज्वेल्स पे आपके साथ आपको एजुकेट करके 22 कैरेट, 18 कैरेट या डायमंड ज्वेलरी की सिलेक्शन के लिए राज ज्वेल्स तैयार है। और सिद्धि जी, मैं तैयार हूँ आपके उस खूबसूरत से सवाल का।
0: तो बॉबी जी, बात तो बस इतनी सी है कि हमें तो चाहिए कि हम अपनी माओ को नए नए झुमके दे, नए कंगन दे, लेकिन डर भी बड़ा लगता है क्योंकि अगर उन्हें पसंद नहीं आया या फिर बहुत ज़्यादा डांट पड़ गई, तो इससे अच्छा कुछ ऐसा इजी सोल्यूशन है कि जिससे थोड़ा बहुत गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और हम अपनी मॉम को बता भी पाए कि हाउ मच वी लव देम।
1: देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले तो rajjewels.com पे इजी रिटर्न्स एंड एक्सचेंज पॉलिसीज के बाद यू कैन गेट ए फुल रिफंड। सरप्राइजेस आर मेंट टू बी गिवन। हम चाहते हैं कि आप तोहफा दें इस फियर से नहीं कि मैं शायद फंस जाऊं, उनको नहीं पसंद आए। तो राज ज्वेल्स के इस लिटिल इंडिया स्टोर पे आप विजिट करते हुए

0: चेंज करा सकते हैं। हमारी एक्सचेंज पॉलिसीज बहुत सिंपल है, कोई डिडक्शंस नहीं होती एक्सचेंज करने पे विद इन द टाइम पीरियड। और rajjuice.com पे अगर आप कोई भी गिफ्ट शिप कराते हैं ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स, इजी रिटर्न्स विद एक्सचेंज एंड फुल रिफंड पॉलिसीज अवेलेबल है। आप शिपिंग पॉलिसीज के अंदर जाके मेक श्योर करें कि आप रीड आउट करें और गिफ्ट जरूर खरीदें इस चिंता से कि उनको पसंद नहीं आएगा। गिफ्ट देने में हिचकिचाहट ना करें क्योंकि राजजुल्स आपके साथ हमेशा हर सेलिब्रेशन के लिए तैयार है। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो मैं आपको बताता हूँ, आप राजजुल्स इंस्टाग्राम पेज पे जाके एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो है जो आजकल की जनरेशन जिसे जेंजी बोलते हैं उनके लिए बनाया गया है, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि अपनी कमाई से, चाहे वो इंटर्नशिप फी हो, चाहे वो उनकी अपनी सैलरी हो, छोटा सा कोई प्यार भरा तोहफा ले। और आपने जो स्पेशल वर्ड यूज किया आई लव यू मॉम, उसी का एक प्योर प्यारा सा पैम सर्टिफाइड सिल्वर कॉइन। देखिए, माँ के लिए जरूरी नहीं है कि आपको हीरे और गहने के बड़े बड़े जवाहरात लेने हैं तो ही प्यार दिखता है। आई लव यू मॉम अगर प्यार से कह देंगे तो भी माँ का दिल हमेशा गदगद रह जाता है, लेकिन अगर आई लव यू मॉम पैम सर्टिफाइड सिल्वर कॉइन के साथ देंगे तो जरूर मेमोरीज बिल्ड होंगी। उसकी प्राइसिंग और शिप कराने के लिए rajjuice.com आप विजिट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे जाके rajjuice को फॉलो करते हुए वो छोटा सा प्यारा सा आई लव यू मॉम पैम सर्टिफाइड सिल्वर कॉइन ब्यूटिफुल पैकेजिंग में किस तरह से आप घर ले जा सकते हैं। मेक श्योर यू फॉलो rajjuice on Instagram or rajjuice.com or visit us at Little India Opti Road to celebrate Mother's Day with Rajjuice. Thank you. Happy evening to all.
1: थैंक यू बॉबी जी। तो दोस्तों देखिए, स्टार्ट ऑफ द वीक में गोल्ड के रेट 4500 पर ट्रेलिंग थे, अभी ऑलरेडी $200 बढ़ चुके हैं। तो जितना ज्यादा लेट करोगे मदर्स डे गिफ्ट खरीदने के लिए, उतना ज्यादा गोल्ड के रेट बढ़ते ही जाएंगे। तो आज ही विजिट कीजिए rajjuice.com, चाहे फिर आप अपनी मम्मी के लिए झुमका खरीदना चाहते हो या फिर वो सिल्वर कॉइन जिसपे लिखा है बड़े ही प्यार से आई लव यू मॉम। आज ही विजिट कीजिए rajjuice.com और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे इतने सारे गाने जहाँ बनते हैं, कुछ फ्लॉप कुछ हिट, लेकिन यार कुछ ऐसे एल्बम्स बनते थे जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता था। और 2007 में रिलीज हुआ हुआ एक ऐसा एल्बम सलामी इश्क, जी हाँ, शंकर महादेवन के मैक्सिमम कंपोजिशंस इस एल्बम के लिए थे। और हर एक गाना यार ब्लॉकबस्टर था, मतलब आप स्किप ही नहीं कर सकते, चाहे वो बाबू जी धीरे चलना का रिमिक्स वर्जन ही क्यों ना हो। तो यार इसी एल्बम का एक जो सॉन्ग है वो बहुत ही खास है, एंड दैट इज मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। वैसे तो यार इस गाने को जब फिल्माया गया था तो इतने सारे कपल्स हैं इस मूवी में, जॉन अब्राहम विद्या बालन हो, उनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग थी, फिर चाहे हमारी प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान हो, लेकिन यार सबसे ज्यादा जो अमेजिंग केमिस्ट्री थी जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, दैट वॉज शैनन एसरा एंड गोविंदा की। मतलब ये गाना स्पेसिफिकली जिसमें शैनन एसरा ने बहुत सारे एथनिक कॉस्ट्यूम्स पहने थे और गोविंदा बीन गोविंदा अलग अलग जगहों पे डांस किए जा रहे थे, मतलब कहीं हवेलियों के सामने कहीं ट्रक पर, दिस सॉन्ग वॉज रियली रियली ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड। और गोविंदा के डांस मूव्स, मतलब दे वर किलिंग इट, दे वर टोटली किलिंग इट। तो वेरी वेरी क्यूट सॉन्ग और बहुत ही क्यूट जोड़ी लग रही थी शैनन एसरा और गोविंदा की। वैसे यार ये गाना इतना ज़्यादा प्यारा है तो यू कैन लिसन टू इट एनी टाइम। तो अभी मैं आपके लिए बजाने वाली हूँ मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो इस एल्बम का आपका कौन सा फेवरेट गाना है। टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए सलाम इश्क का मेरा दिल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। वैसे खूबसूरत शाम के खूबसूरत गाने तो बज ही रहे हैं, लेकिन यार एक ऐसा खूबसूरत एल्बम निकला था जिसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे। 2007 की रिलीज्ड सलाम इश्क की मूवी का जो गाना है, सॉरी जो एल्बम है, उसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे यार। शंकर एहसान लॉय ने इस एल्बम को कंपोज किया था और इसके काफ़ी सारे गानों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन एक गाना है जो आपने रिक्वेस्ट किया है। जी हाँ, आदित्य पाटिल एडिसन में जो रहते हैं, उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया इसी एल्बम का, एंड दैट इज दिल क्या करे संग बाय अदनान सामी। वैसे तो यार दोस्तों, सलाम इश्क का टाइटल ट्रैक तो अमेजिंग था ही, लेकिन उसी टाइटल ट्रैक का एक अलग वर्जन बनाया गया था दिल क्या करे इस गाने में, अदनान सामी की मैजिकल वॉइस में। और एक खास बात थी इस गाने की कि यार इस गाने का जो पूरा मूड है, पूरा रोमांटिक मूड है, यू नो पूरा रोमांस ओवरलोडेड है इस गाने में, लेकिन उस रोमांस के वाइब को रखने के लिए यानी सेटअप करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ना सिर्फ एक कैंडल जलाई थी ताकि एक नो अच्छा सा मूड सेट हो जाए और अदनान सामी एकदम हैप्पी ये गाना गा पाए, एकदम अमेजिंग मूड में, शाम वाले मूड में। और ऐसा ही कुछ हुआ, बस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक कैंडल जलाई गई थी और उसी कैंडल की लाइट में अदनान सामी ने अपनी मैजिकल आवाज में ये गाना गाया। तो चलिए आदित्य के लिए बजाते हैं दिल क्या करे फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम्स सलाम इश्क 2007 की रिलीज। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई एल्बम पता है जिसके सारे के सारे गाने आपको पसंद है तो टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH अच्छा है, क्योंकि बजाते हैं यार उस एल्बम के सारे गाने राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: शाम शानदार लेट्स डू नॉट डंकी हैव अ फंकी टाइम
2: लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए

इनकी एंडिंग्स ही अगर अलग होती तो भी क्या ये मूवीज इतनी ही हिट होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बॉलीवुड में ऐसी तीन मूवीज हैं जिनकी एंडिंग्स कम्प्लीटली अलग लिखी गई थी, यहाँ तक कि शूट भी की गई थी, लेकिन फिर जो प्रीमियर ऑडियंस है उनका रिएक्शन देख के इनकी एंडिंग कम्प्लीटली बदल दी गई और फिर जो रिलीज हुई उसके बाद ये मूवीज सुपर डुपर हिट हुई। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ओरिजिनल एंडिंग्स होती तो क्या ये मूवीज उतनी ही हिट होती। एंड द फर्स्ट वन इन द लिस्ट इज आमिर खान की पीके। जी हाँ, इसके एंडिंग में ऐसा डिसाइड हुआ था कि सरफराज का जो कैरेक्टर है और जग्गू का जो कैरेक्टर है वो एंड में पीके का डांस करेंगे, जो बैटरी रिचार्ज डांस है ना वो करते हुए मूवी एंड हो जाएगी। लेकिन फिर जो टेस्ट ऑडियंस है यानी जो प्रीमियर की ऑडियंस है, इनको ये एंडिंग इतनी पसंद नहीं आई और फिर पीके की एंडिंग कंप्लीटली चेंज कर दी गई। रणबीर कपूर का कैमियो डाला गया ई गोला माँ यानी इस धरती पर, और फाइनल एंडिंग उसी को फाइनलाइज किया गया। तो मैं ये सोचती हूँ कि बैटरी डांस वाला एंडिंग क्या आपको पसंद आता? टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना, वैसे जो अगली मूवी है जिसकी ऑल्टरनेट एंडिंग हो सकती थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही जल्द, लेकिन आप कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ। Right here on Mirchi, it's hot.

0: Milci.
1: Scabana, scabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virgua, la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। आप

0: हाँ मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
1: हाय।
0: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
1: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
0: धोबी से
1: पूछ लीजिए।
0: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
0: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
3: ये बेल जा रही है।
0: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
0: आपके पास
2: है?
0: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर 33501 है।
2: हेलो
0: सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है।
2: मेरी
0: बात सुनिए ना,
2: किस किस से पूछे जा रहे हैं?
0: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
0: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना आता है।
0: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
3: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
3: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

ऑल्टरनेट यूनिवर्स तो सुना होगा, लेकिन आज बात हो रही है ऑल्टरनेट एंडिंग्स की। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बॉलीवुड में ऐसी तीन मूवीज बनाई गई थी जिनकी एंडिंग्स कम्प्लीटली अलग थी, और फिर टेस्ट ऑडियंस यानी जो हमारे प्रेमियर वाली ऑडियंस है उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया ओरिजिनल एंडिंग्स को, इसलिए उनकी एंडिंग्स ही बदल दी गई। लेकिन एंडिंग्स बदलने के बाद भी ये मूवी सुपर डुपर हिट हुई। एंड द फर्स्ट मूवी इन दैट लिस्ट वॉज आमिर खान की पीके, एंड द सेकेंड मूवी इन दिस इज दिल्ली 6।

मसक कली मसक कली गाना तो आपको पता ही है। और इनिशियली जो क्लाइमैक्स सीन था उसमें ये डिसाइड हुआ था कि अभिषेक बच्चन मरने वाले हैं प्रिटेंडिंग टू बी काला बंदर, लेकिन यार ये एंडिंग इतना ज़्यादा डार्क था, इतना ज़्यादा डार्क था कि मेकर्स ने डिसाइड किया कि नहीं यार ऐसा करते हैं कि जो ओरिजिनल एंडिंग है जिसमें अभिषेक अपना जो प्यार है सोनम कपूर के कैरेक्टर के लिए वो कन्फेस करते हैं एंड यू नो काला बंदर बन के नहीं मारना है इनको, ये फाइनल हो जाता है एंड ये जो अल्टरनेट एंडिंग है ये सुपर डुपर हिट हो जाती है। वैसे द थर्ड मूवी इन द लिस्ट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड, क्योंकि सबका बदला लेगा मेरा फैजल की एंडिंग ही कुछ और होने वाली थी। क्या होने वाली थी मैं जल्दी बताऊंगी, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो कि ऑल्टरनेट एंडिंग के साथ दिल्ली सिक्स आपको पसंद आती है क्या? टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए दिल्ली सिक्स का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Ahora va. Ahora va. It's Gunny.
1: Radio Merchie, New York. It's hot.

बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। सोचिए अगर फैजल कंप्लीटली बदला ले पाता तो क्या होता। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी। और जी हाँ, ऐसी तीन मूवीज बनी है बॉलीवुड में जिनकी एंडिंग्स कंप्लीटली अलग लिखी गई थी, लेकिन जो टेस्ट ऑडियंस है ना, उनको ये एंडिंग्स पसंद नहीं आई, इसलिए डायरेक्टर्स ने सोचा कि चलो एंडिंग ही बदल देते हैं। एंड द फर्स्ट मूवी इन दैट लिस्ट वॉज पीके, द सेकेंड मूवी वॉज दिल्ली सिक्स, एंड द थर्ड मूवी वॉज गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट टू, जिसमें फैजल खान अपना बदला ले लेते हैं बाई शूटिंग रामाधीर सिंह। और तब अनुराग कश्यप को लगता है कि यार कितना मज़ा आया, मतलब ऑडियंस का रिएक्शन देख के वो खुश हो चुके थे, एंड दैट वॉज गोइंग टू बी इट। मतलब फैजल खान एंड में मरने ही नहीं वाले थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या सूझ गया अनुराग कश्यप जी को, उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं यार, ये इमोशन को कंटिन्यू करना चाहिए और एंड में फैजल खान को भी मरना पड़ेगा, ताकि ये मैसेज पहुंच जाए ऑडियंस की तरफ कि एंडलेस साइकिल ऑफ वॉयलेंस का कोई पर्पज़ नहीं होता है। मतलब ऐसा ही होता है, अगर एक को मारोगे तो तुम भी मरोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और एंड में फैजल खान को भी मरना पड़ा, लेकिन सोचिए ना, अगर इंटरनेट एंडिंग होती, यानी फैजल खान अगर जिंदा होते तो क्या मजा आता। वैसे आपको एंडिंग पसंद आती या नहीं, टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी, SIDDHI। और तब तक के लिए गैंग्स ऑफ वसेपुर का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Wow.
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधू और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।